कोई बन्या तहरा मनो कोई बन्या तहरा मनो कोई अरमवई मनो कोई अरमवई मनो कोई अरमवई मनो मार्गा कोई